0: गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर, आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. अरे भाई उठ जाइए, नींद से नहीं अपने ख्वाबों से उठिए, क्योंकि आज का दिन आपके नाम कर दे ना यार. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, और आप सुन रहे हो एमजीएम 90.8 एफएम, जहाँ हर सुबह होती है ताजगी से भरी. कितनी अजीब बात है ना, सुबह होती है लगता है आज कुछ नया होगा, और यकीन मानिए हो भी सकता है, क्योंकि हर सुबह एक मौका है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करने का. जस्ट जिंदगी से प्यार किए जा. तो चलिए आज की शुरुआत करते एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ. अगर सूरज हर रोज बिना शिकायत के उग सकता है, तो हम भी हर दिन बिना हार माने शुरुआत कर ही सकते हैं ना. तो जो लोग आज लेट उठे, चाय पीजिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और हाँ, जो पहले से जग चुके, अरे वाह क्या बात यार, आप तो पहले से ही जीत गए मेरे यार. चाय के कप की चुस्की के साथ आज के शो का आगाज भी करते हैं. तो आइए इस महफिल को सजाते हैं, यहाँ पर ढेर सारी बातें होगी, बहुत सारी बातें होगी और बढ़िया सी नगमों का साथ भी होगा. इसी के साथ इंफोटेनमेंट के साथ एंटरटेनमेंट की सौगात होगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड मॉर्निंग विद आरजे अदनान इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम.

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। स्कूल में हम सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर होता है जिसका पढ़ाया हुआ चैप्टर शायद हम भूल जाए, लेकिन उससे कही हुई एक बात पूरी जिंदगी याद रहती है। एक लड़का था, पढ़ाई में बहुत साधारण, ना क्लास का टॉपर, ना किसी प्रतियोगिता का स्टार, यानी कि मेरे जैसे ही समझिएगा। कई बार कम नंबर आते तो लोग मजाक भी उड़ाते। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। एक दिन परीक्षा के नतीजे आए, फिर से कम नंबर, पूरी क्लास के सामने उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी क्लास टीचर उसके पास आई। उन्होंने डांटा नहीं, ये कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हर बच्चा किसी न किसी चीज में अच्छा होता है, तुम्हें बस अपनी जगह ढूंढनी है। उस दिन शायद वो लड़का उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हार मानना छोड़ दिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने अपनी दूसरी खूबियों पर भी ध्यान देना शुरू किया। बोलने में अच्छा था, लोगों से जुड़ने में अच्छा था, और धीरे धीरे उसी हुनर ने उसकी पहचान बना दी। सालों बाद जब वो अपनी जिंदगी में कुछ बन गया तो एक दिन उसी स्कूल गया, उस टीचर से मिला। टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, पहचाना मुझे? लड़के ने कहा, मैडम अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। सच तो ये है दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी सलाह नहीं चाहिए होती। कभी कभी किसी टीचर का एक छोटा सा विश्वास एक बच्चे की पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे टीचर है तो आज उन्हें एक थैंक यू जरूर कहिए, क्योंकि कुछ हीरो किताबों में नहीं क्लासरूम में मिलते हैं। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सब ना तो अपनी बाइक या कार की रेगुलर सर्विस तो करते हैं ना, सभी लोग करते होंगे। थोड़ी सी आवाज आए तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन एक सवाल है, अपनी बॉडी की सर्विसिंग आखिर कब करोगे आप, और आखिरी बार कब की थी, कुछ याद है? एज अगर आपकी 30 साल की एज है तो उसके बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ चीजें बिना किसी सिम्टम्स के भी बढ़ सकती है, जिसे ब्लड प्रेशर, कैलोरीज और ब्लड शुगर। और दिक्कत ये है कि कई बार इनका पता तब चलता है जब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर रेगुलर हेल्थ चेकअप की सलाह देते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। आजकल हम फिटनेस एप्स में स्टेप्स काउंट करते हैं, कैलोरीज ट्रैक करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ नंबर्स, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का पता ही नहीं होता है हमें। और दोस्तों, एक खास बात की हेल्थ चेकअप करवाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी सेहत को लेकर आप सीरियस है। अगर आप 30 प्लस हो गए तो इस साल एक बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएगा, क्योंकि सेहत की असली जीत तो समय पर जांच करने में है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और याद रखिए, आज का एक हेल्थ चेकअप कल की बड़ी परेशानी को रोक सकता है। स्टे ट्यून।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सर आंखों पर आरजे अदनान तुम चाहे सुबह है इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम या वेज नदर मी तुमची फरमाइश पूर्ण करत असतो क्योंकि यार जितना शो ये मेरा है उतना आपका भी है सो आप मुझे आपकी गानों की फरमाइश बताइए वो मैं पूरी करूंगा क्योंकि यार बस मेरा बोलना तो लाजमी नहीं है आपका भी सुनना लाजमी है ना सो आज गाण्याची फरमाइश आलेली आहे मनीषा काळे यांच्याकडून या गाण्यासाठी
2: किसका रास्ता देखे है दिल ऐसौदाई
0: वाह क्या बात है किशोर कुमार जी की आवाज में किसका रास्ता देखे हे गाणं आता मनीषा काळे यांनी फरमाईशसाठी सांगितलं आहे तर मॅडमची आता आपण फरमाईश पूर्ण करूयात बाय द वे तुमची सुद्धा काही फरमाईश असेल तर व्हॉट्सअप करा 9359320080 या व्हॉट्सअप नंबरवर आणि सध्या आपण हे फरमाईशचं गाणं ऐकूयात स्टे ट्यून

हर जालिम एक हस्ती है, मजहब जुल्म परस्ती है, ये दुनिया

अपने छत्रपति संभाजीनगर में सिग्नल तो है लेकिन चलते है क्या? यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि शहर में जो सिग्नल है वो सीधे साधे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट सिग्नल्स। जी हाँ, स्मार्ट तरीके से सिग्नल चलते हैं कि उल्टी गिनती कभी को आरियत शुरू कर देते और उल्टे तरीके से सिग्नल चलते हैं। कभी ग्रीन सिग्नल होता है तो रेड लाइट लगती है और कभी रेड लाइट पर ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से टाइमिंग इसका हो रहा है। और जो टाइमर होता है ना लगाया हुआ, वो कभी कभार बीच में रुक जाता है, सही चलता है तो कभी रॉन्ग तरीके से चलता है, बीच में ही ना तो सिग्नल बंद हो जाते हैं, चलते चलते सिग्नल बंद हो जाते हैं और टाइमर तो दिखाई ही नहीं देता। एंड इस वजह से सेवन हिल के पास ना तो अक्सर ट्रैफिक जाम हो रहा है। और बस सेवन हिल से नहीं, समर्थ नगर, मिल कॉर्नर और शहर में के बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि स्मार्ट है लेकिन खराब हो चुके हैं और इसका मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, खराब खराब और खराब वाली, लेकिन इसको ठीक ठीक और ठीक करने वाला टाइम अब तक आया नहीं। शायद जब टाइम आएगा तब ये ठीक करेंगे, लेकिन कब होगा पता है क्या? जब तक इस सिग्नल्स की वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो या किसी की जान ना चली जाए या कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक ये सिग्नल ऐसे ही रहेंगे। जब ठोकर लगेगी तब जाके ये सिग्नल ठीक हो जाएगी। और ट्रैफिक जाम तो अब रोज ही हो रहा है तो इसकी आदत लग गई है। रास्तों का तो कुछ होता नहीं है मेंटेनेंस, इस सिग्नल का कब होगा ये भी नहीं पता। सो घर से थोड़ा जल्दी निकले ताकि आप डेस्टिनेशन पर वक्त पर पहुंचे। बाकी अब एंजॉय करें आरजे अदनान के साथ सुपर डुपर हिट गाने ऑन MGM 90.8 FM।

0: जो भी एड्स आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देते वो ट्रस्टेबल नहीं होते, याद रखिएगा, वरना आप भी बहुत पछताओगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और अपने शहर में आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग ना तो साइबर फ्रॉड के इस जंजाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक केस सामने आया है जहां पर 70 या 71 साल की बुजुर्ग है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर उनको एक AI एड दिखी और उस एड में बताया हुआ था कि आप कॉन्टा यूनोवेक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, मतलब जिसको पहचाना जाता है कॉन्टाइन CFD ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। उन बुजुर्ग को लगा कि यार ये तो ट्रस्टेबल है, चलिए फिर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो पहले उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ, पैसा बाहर निकालना है, तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी। तो सामने से बताया गया कि आपको UK टैक्स के लिए कुछ पैसे भरना पड़ेंगे, तभी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और उसके बाद उन्होंने पैसा पे किया, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा आने के बदले उनके बैंक से पैसा कटता हुआ जा रहा था और इन्वेस्टमेंट उन्होंने तकरीबन 30 लाख की थी। और फिर देखते पैसा गायब हो गया। सामने वाली कंपनी को कांटेक्ट कर रहे तो कुछ कांटेक्ट उनका हो ही नहीं रहा था। फिर उनको समझ में आ गया कि अपने साथ तो फ्रॉड हो चुका है। और ये इन्वेस्टमेंट उनकी 12 मार्च से शुरू थी तो जुलाई तक, उसके बाद फिर फ्रॉड हुआ। फिर वो पुलिस स्टेशन गए, बाद में पता चला कि किस तरीके का ये पूरा केस था, साइबर फ्रॉड। तो ऐसी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो प्लीज, हमेशा हर कोई कहता है आपसे कि यार ऑनलाइन फ्रॉड में मत फंसिएगा, लेकिन लोग फंसते ही जा रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, कोई भी एड्स के ऊपर ना तो के भरोसा मत कीजिएगा, ट्रेडिंग के एड्स हो या फिर इन्वेस्टमेंट के एड्स हो। और हाँ, आजकल तो हर बुजुर्ग के हाथ में सोशल मीडिया है, तो जरा अपने दादा दादी को, बुजुर्ग लोगों को समझाइएगा कि ऐसे जो एड्स आप देखते हो वो ट्रस्टेबल नहीं होते। तो अगर आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया है या आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर 1930। ये नंबर याद रखिए और सेफ रहिए। स्टे ट्यून्ड।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
0: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈസെൽഫ് ആർജെ അദ്നാൻ ആൻഡ് യു ആർ ലിസണിംഗ് എംജിഎം 90.8 എഫ്എം. और हम हमारे शो में ना तो अक्सर स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, गपशप करते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं एक शेफ के साथ. जी हाँ, और हमारे साथ है शेफ कुणाल कुमावत. तो आज इन्हीं के साथ गुफ्तगू होगी, बातें होगी. हेलो कुणाल जी, आपका स्वागत है. इस्तकबाल है.
1: नमस्ते सर.
0: कैसे हो सर आप?
1: मैं बढ़िया, आप बताइए.
0: एकदम बढ़िया. आप शेफ कैसे बने, किस तरीके से आप इस फील्ड में आए थे?
1: पहले तो मुझे पता ही नहीं था शेफ क्या है, मतलब क्या होता है. जस्ट एक घर पे थोड़ा बहुत पुराना रात का राइस, वो जो भी वाइट रहता है, थोड़ा सुबह फ्राइड राइस बना के या फिर राइस गरम करके, या फिर कभी भूख लगी मैगी बना दी, थोड़ी टेस्टी वाली सूपी मैगी, थोड़ा सॉस भी डाल के, कभी तड़का मार के, तो ऐसे बना लिया. और फिर बाद में ऐसे पता चला कि कुछ भी होता है एक होटल मैनेजमेंट करके.
0: येस, येस.
1: तो उसके बाद मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर बाद में एडमिशन हो गया IHM भुवनेश्वर कॉलेज में स्टडी की. फिर बाद में पास आउट होकर कैंपसिंग में लग के फिर अभी 10 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है. आई वर्क इन मैरिड स्वीट पुणे, देन दी ओबेरॉय मुंबई नरियन पॉइंट, देन WTY हिल्टन गोवा न्यूटी डॉक, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट शेफ एट द SSK सोलिडर होटल नासिक.
0: ओके,
1: सो वी हैव 2-3 होटल्स इन नासिक. वन इज द SSK सोलिडर होटल, एंड अनदर इज द SSK सोलिडर होटल बुटीक होटल एंड स्पा, एंड देयर इज वन कैफे, 2 Sisters एंड किचन. सो आई एम रनिंग दैट आल्सो.
0: क्या बात है. और सर, हर एक शेफ की एक स्पेशलिटी होती है कोई डिश, तो आपकी क्या स्पेशलिटी है?
1: वैसे अभी इतने साल किचन में रहा हूँ, काम किया है, तो ऐसा कुछ स्पेशलिटी तो रहा नहीं है. बट हाँ, मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है. वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब मेरा फेवरेट, मैं मेरे तरीके से बना लेता हूँ.
0: क्या बात है.
1: यस, बाकी तो ऑल राउंडर.

0: स्टार्टिंग इटालियन किया था, इटालियन स्पेशलिटी, बट एज अ इंडियन तो ऑब्वियसली बटर चिकन.
1: तो आपका फेवरेट क्या है, इंडियन इटालियन?
0: अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है, मतलब देखा जाए तो डिपेंड ऑन मूड, बट देखा जाए तो घर का खाना इज ऑलवेज बेस्ट.
1: वो तो है. वाओ, तो कुछ इस तरीके से जर्नी थी शेफ बनने की. तो अपनी बातों का सिलसिला और गपशप यूं ही बरकरार रहेगी कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर हिट गाने एंड स्टे ट्यून्ड.

0: आपले इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीना स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913.

0: Let's talk about kitchen hygiene. You're listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है और आज अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट है शेफ कुणाल कुमावत, जिनके साथ आज हम गुफ्तगु कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो कुणाल जी, FDA की कुछ गाइडलाइंस आई है, होटल्स में जो किचन होते हैं तो उसको हाइजीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करें?
1: जी डेफिनेटली, इसमें अभी FSSAI ने सबको बता दिया है, हर एक कैटरिंग कॉलेज में बताया जाता है कि क्या गाइडलाइन है फूड सेफ्टी के बारे में। तो पहले तो सेल्फ हाइजीन हो गया, शेफ ने खुद को कितना हाइजीन रखना चाहिए, खुद और अपने किचन का कितना हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, प्लस जो स्टोरेज है वेज नॉन वेज वो कैसा सेग्रीगेट करके रखना चाहिए, उसमें टैगिंग हो है या नहीं है, क्लीनलीनेस देखना चाहिए। फिर बाद में आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी चीजें चेक करनी चाहिए। देन आप जो भी कुछ काम कर रहे हो वो सैनिटाइज हो रहे क्या, नाइफ वगैरह जगह सैनिटाइज हो रही है क्या, जहाँ पे कटिंग कर रहे हो चॉपिंग बोर्ड कलर कोडेड के यूज के हिसाब से यूज हो रहे क्या, उसके बाद यूज करने के बाद वो सैनिटाइज हो रहे क्या। तो ये सब एज ए FSSAI के मामले से देखा जाए तो सबने देखना चाहिए।
0: और एक बेसिक सवाल सर, कि बहुत सारे होटल्स में क्लीननेस बहुत अच्छी होती है लेकिन कुछ होटल्स में नहीं होती है, तो दिन में से कितनी बार अपना किचन हम क्लीन करें?
1: देखो अभी क्लीनिंग के बारे में तो ये है, शेफ की एक बहुत अच्छी और बुरी आदत यह रहती है कि वो जैसे काम करता है पहले क्लीन करता है। इसे अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं।
0: बुरा क्यों?
1: बुरा मींस इन द सेंस, अभी आपको ऑर्डर है, ऑर्डर चल रहा है, किचन फुल बिजी है, पर उसको पहले ऑर्डर से पहले क्लीन करना है। सो वो उसके माइंड सेट है कि मुझे अभी ये काम हो गया, मुझे क्लीन करके फिर दूसरा काम करना है। पर अभी अगर एज अ शेफ मैं बोलूंगा मुझे इमरजेंसी है भाई, वो तू छोड़ पहले तू ये ऑर्डर निकाल, पर उसका माइंड सेट है मैं पहले मैं क्लीन करूंगा फिर ऑर्डर निकालूंगा, तो दैट्स बुरा मतलब ये बोल सकते हैं। और बाकी अच्छा तो ऑल टाइम गुड है, आप हर एक टाइम पे क्लीनलीनेस रख ही रहे हो, इट्स ऑल वेल एंड गुड।
0: तो होटल के किचन्स के हाइजीन किस तरीके से मेंटेन की जाए इस बारे में अभी हमने जाना, तो ये सभी चीजें याद रखिएगा और अपने होटल के हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। बाकी और भी अपनी बातें यूं ही जारी रहेगी, तब तक स्टे

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है और आज हमारे साथ है शेफ कुणाल कुमावत. तो कुणाल जी, FDA ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, उसके अंदर ऑयल के बारे में भी था कि आप होटल में और किचन में ऑयल बस वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, या फिर उसका एक लिमिटेशन होता है ऑयल यूज करने का, उतना ही आप वो ऑयल यूज कर सकते हैं. तो उस बारे में जरा हमें बताएगा कि किस तरीके से हम समझे अब ये ऑयल हमने यूज करना चाहिए या अब इसकी जरूरत नहीं है, ये कैसे समझे हम बेसिक तरीके से.
1: इट्स डिपेंड ऑन व्हाट यू आर मेकिंग. मतलब फ्राइंग में दो बार तो ठीक है, और आप बहुत ही डेली मतलब हर टाइम फ्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो वन टाइम यूज होना चाहिए सर.
0: ओके, वन टाइम. बट वो कैसे समझे कि ऑयल खराब हो रहा है या अभी अच्छा है, कुछ ऐसे एक नजर में हमें समझ में आ सकता है क्या?
1: ऑब्वियसली अभी आप रील में देखते होंगे कि सब बोलते हैं देखो ग्रीस ऑयल, ये ऑयल, उतना वो ग्रीस होने तक जाना ही नहीं चाहिए.
0: मतलब ब्लैक नहीं होना चाहिए.
1: एग्जैक्टली, ब्लैक भी और थोड़ा जल जाता है ऑयल तो स्मेल आता है और उसका कलर टेक्सचर ASAP चेंज हो जाता है. तो आपको समझ लेना चाहिए कि अभी ये चेंज करने का बारी आ
0: गया है. और कुणाल जी, वो फूड कलर जो होता है लोग अक्सर खाने में डालते हैं तो,
1: और होके होना भी नहीं चाहिए, व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड वो आदत ही बुरी है. बट देखा जाए आपको कलर चाहिए ग्रेवी में कुछ भी, कश्मीरी रेड चिली आती है होल,
0: ओके,
1: उसको भिगाओ, अच्छे से बॉईल करो, पेस्ट मारो, कोई भी ग्रेवी में यूज करो, क्योंकि आप नेचुरल हो, नेचुरल पीजे यूज करो.
0: यस,
1: केसर है, सैफरन है, येलो कलर के लिए वो यूज करो, स्पिनच यूज करो ग्रीन के लिए, रेड के लिए कश्मीरी चिली है वो यूज कीजिए.
0: तो फूड कलर छोड़कर जो अभी शेफ जी ने हमें बताया है वो चीजें आप यूज कर सकते हो अपने किचन में ताकि खाना और स्वादिष्ट बने. और अभी अपनी बातों का सिलसिला गपशप यूं ही जारी रहेगी कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून.

0: गाने को लगाकर ब्रेक आरजे अदनान आपके साथ आ चुका है ऑन MGM 90.8 FM। और आज हम बात कर रहे हैं शेफ कुणाल कुमावत जी के साथ। तो कुणाल जी, अक्सर एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है, सवाल होता है कि इस दुनिया में, इस धरती पर वेज बिरयानी होती है या नहीं, मतलब वेज बिरयानी है या वो बस पुलाव है, आपके क्या ओपिनियन है एज अ शेफ?
1: ये अभी ये तो ऐसा हो गया, पहले मुर्गी आई अंडा, ठीक है, बट अंडे को अभी कोई मतलब सक्सेस मतलब बोल नहीं पाया कि ये प्योर वेज है और नॉन वेज है। सेम बिरयानी का वही हाल है, वो अंदर है ना बाहर है। तो जिस पर्सपेक्टिव से देखा जाए आप कि वो बिरयानी भी है, वो ताहिरी भी है, वो वेज पुलाव भी है, तो वो डिपेंड अप टू यू व्हाट यू हैव इट एंड व्हाट यू थिंक इट।
0: यस यस, पर बिरयानी नॉन वेज की होती है।
1: एग्जैक्टली, वो तो है,
0: वो तो है, मतलब जो कहते हैं कि वेज बिरयानी वो पुलाव होता है, याद रखिएगा सर। ये हाँ या ना बस गई है,
1: अभी इस पे कोई भी शेफ श्योरली बोल नहीं सकता।
0: नहीं सर, ये लीगल मतलब इसके ऊपर ठाप तो नॉन वेज की है,
1: वो डेफिनेटली अभी वो शेफ लोग का कमिटी बैठेगा, उसके ऊपर वो सोल्यूशन निकालेंगे।
0: यस एग्जैक्टली। सो सर, आज MGM में आप आए हो इंडक्शन के लिए।
1: जी,
0: तो आपको कैसे लगा MGM का पूरा माहौल, होटल मैनेजमेंट?
1: मैं तो बोलूंगा कि मैंने सिर्फ IHM कॉलेज देखे, उसके बाद यूनिवर्सिटी कोई देखी नहीं थी। मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी विजिट था।
0: ओके,
1: और डेफिनेटली अमेजिंग, बहुत अच्छा। एक ही अंडर वन रूफ, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे

0: कॉलेजेस, स्टूडेंट, थाउजेंड, टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और हर एक चीज है, हर एक चीज है. मैंने अभी देखा नीचे वहाँ पे वो साड़ी बनाने का खादी डिपार्टमेंट, क्या बात है. मैंने कभी इतना बड़ा फैक्ट्री देखा नहीं, बट छोटे में बड़ा फैक्ट्री. और फिर बाद में वहाँ पे देखा मैंने कि वो प्रिंटिंग स्टैचूज हो रहे थे, तो क्या बढ़िया बना. अभी मैंने मतलब पंडुरपुर की वारी आ रही है, तो मैंने वो ग्लास में देखा अपना दिवे घाट का, क्या बढ़िया सीन है वो प्रिंटेड में. तो मैंने मेरे लाइफ में पहली बार इतना सारा सब कुछ एक अंडर वन रूप देखा. तो हैट्स ऑफ एमजीएम यूनिवर्सिटी. मैं कल तक सिर्फ फोटो में था, गूगल पे सर्च कर रहा था क्या है. आज पहली बार मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एंड दे दिस पीपल आर वेरी लकी, दे आर स्टार्टिंग ईयर वेरी नाइस. Have a great success.
1: Yes, sir. Thank you so much, Kunal. Thank you so much, Kunal ji. Thanks a lot. बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके और बहुत सारी बातें हमें पता चली. So thank you so much.
0: Most welcome, sir. Most welcome. Yes. Thank you for inviting me.
1: Welcome, sir.
0: Yes.
1: Yes. Stay tuned. All is well.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज.
3: बारावी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि पदवीनंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे. यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा.
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी.
4: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक. आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी. एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6. कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130. एमजीएम पेट केअर.
5: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. प्रोग्राम बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC. कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit mgm campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

93.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो तो मेरी जान, मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well. RJAdnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM।

0: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AI ML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. विजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913.

वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और इसी के साथ हम बड़े हो चुके हैं। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम और बात कुछ ऐसी कि कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि तारक मेहता में जो जेठालाल है तो वो आई थिंक शो छोड़ रहे हैं। अब इस बात में कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ ये भी देखा मैंने कि यार कंफर्म हो चुका है कि जेठालाल अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने वाले हैं। देखो यार, अब मुझे इतना याद है कि 2008 से ये शो शुरू हुआ था, तब मैं स्कूल में था और तब से लेकर आज तक ना तो हम अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा या अपने बढ़ती उम्र के साथ हम ये सीरियल देखते हुए आए हैं और धीरे धीरे पिछले 5-6 सालों में इस सीरियल के ना जो मेन जो अटैचमेंट वाले कैरेक्टर थे जिससे अपने को एक लगाव था वो सब लोग शो छोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। जैसे दयाबेन चली गई तो लग रहा था कि आप शो में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जैसे तैसे शो को जेठालाल ने संभाल के रखा था, अब न्यूज़ कन्फर्म हो चुकी है कि जेठालाल भी ना तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो अब ये मेन कैरेक्टर जाने के बाद इस शो में बचा ही क्या है, और जिस तरीके से पहले इस शो की एक हाइप थी, लोगों का एक फ़ैन बेस था, लोग 8:30 बजे ना तो टीवी के सामने बैठते थे इस सीरियल देखने के लिए, बट आज के वक्त में पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि उसका क्रेज़ थोड़ा कम हो गया है और जो एक बेहतरीन से कैरेक्टर थे जिनसे लोगों को लगाव था वो जैसे जैसे शो छोड़ रहे हैं तो शो की जो लोकप्रियता हम कह सकते हैं वो धीमी धीमी हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। अब जेठालाल ने अगर शो छोड़ दिया तो ये शो चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आधा इसका फैन बेस जो है वो ख़त्म हो सकता है जेठालाल ने शो छोड़ने के बाद, किसी मेरी जबान ऐसी फिसल रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि शो चलेगा या नहीं चलेगा अगर जेठालाल ने शो छोड़ दिया तो? डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आर जी अदनान इस इंस्टा पेज पर, और बाकी अब एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपरहिट गाना दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में, एक कुड़ी ऑन एमसीएम 90.8 एफएम।

0: तुला इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी छत्रपती संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस, सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503082913.

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
2: साथ है तो बात है।
3: The last ride, King.

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। अगर दिन थोड़ा थका देने वाला भी रहा है तो कोई बात नहीं, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स होने का, मुस्कुराने का और अपने लिए कुछ पल निकालने का। शाम का अपना ही एक अलग जादू होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब ठंडी हवा चलती है और मन थोड़ा सुकून ढूंढता है तब अच्छे गाने उस पल को और भी खास बना देते हैं। तो चाहे आप ऑफिस से घर लौट रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो, दोस्तों के साथ हो या बस अपनी चाय या कॉफी का आनंद ले रहे हो, हमारी कोशिश है कि आपका ये सफर और भी खूबसूरत बन जाए। आने वाले गानों से मिलेगा प्यार, दोस्ती, खुशियाँ और यादों का खूबसूरत एहसास। इसीलिए मुस्कुराइए, टेंशन को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और इस प्यारे से शाम को संगीत के नाम कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आप सुन रहे हैं दिल से। कहीं मत जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है शानदार गानों का सिलसिला सिर्फ आपके लिए, ओनली ऑन एमजे 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: का इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, इन्स्टिट्यूट छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपकी शाम अच्छी जा रही होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस होना बिल्कुल आम बात है। कभी काम का प्रेशर, कभी पढ़ाई का टेंशन, तो कभी जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस को थोड़ा थोड़ा करके कम किया जा सकता है। सबसे पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। 5 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए या फिर थोड़ी देर टहलाइए। यकीन मानिए, छोटी छोटी बातें भी मन को हल्का कर देती है। अगर मन में बहुत कुछ चल रहा हो तो किसी अपने से खुलकर बात कीजिए। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से ही आधा तनाव कम हो जाता है। और हाँ, हर बात को दिल पर लेना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। याद रखिए, आपकी मुस्कान और आपकी सेहत किसी भी टेंशन से ज़्यादा कीमती है। इसलिए खुद का ख्याल रखिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए और हर दिन अपने लिए कुछ अच्छे पल ज़रूर निकालिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त है कुछ ऐसे शानदार गानों का जो आपके मूड को और भी बेहतर बना देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, क्योंकि अच्छी शाम और अच्छे संगीत हमेशा साथ चलते हैं। Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: master tomorrow's tech today, not someday. Make today's one right decision, tomorrow's bright future. Join Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and IT at MGM University for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry project start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac.in or call on 9371174254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? Institute of Information and Communication Technology, MGM University मध्ये मिळवा Future Ready प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
4: B.Tech in Computer Science and Engineering, B.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Tech in Information Technology, B.Tech in Data Science,
5: PG, M.Tech in AI and ML, M.Tech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर Diploma in Cyber Security and Digital Forensic.
4: Admissions open. For more information, call on 9404-94299.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। गर्मी हो या मौसम थोड़ा उमस भरा हो, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक ग्लास ताज़ा फलों का जूस आपके दिन को और भी फ्रेश बना सकता है। संतरे का जूस हो, आम का, अनार का या फिर मौसमी का, हर फल अपने साथ स्वाद भी लाता है और ताजगी भी। अगर हो सके तो घर पर बना ताज़ा जूस पीने की आदत डालिए। इसमें स्वाद भी होता है और फल का प्राकृतिक गुण भी बना रहता है। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखिए, जहाँ तक हो सके बिना ज़्यादा चीनी मिलाए जूस पीजिए, और अगर पूरा फल खाने का मौका मिले तो वो और भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें फाइबर भी मिलता है। तो आज की शाम अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अपने पसंद का एक ताज़ा जूस बनाइए, आराम से बैठिए और इस म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें हर दिन बेहतर महसूस कराती है। चलिए अब इसी ताजगी और शानदार म्यूज़िक का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इन द शो दिल से, क्योंकि यहाँ हर शाम होती है खुशियाँ, पॉजिटिविटी और बेहतरीन गानों के नाम। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: यार फोन तो मत काट, मानता हूँ हो गई गलती, अब मान भी जा।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी अपनी चमक नहीं खोते, उन्हें सुनते ही यादें ताज़ा हो जाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। ऐसा ही एक सदा

0: थोड़ा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अब बारी है उस सदाबहार गाने की जिसे सुनकर बारिश की यादें और भी हसीन हो जाती है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे मनीषा आपके साथ इन द शो दिल से। अब सुनते हैं ये शानदार गाना जिसे सुन के आपका मूड और भी फ्रेश हो जाएगा। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वीनंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 10वीनंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस N6 सिडको छत्रपती संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस मौसम में नमी बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस जल्दी फैल जाते हैं, इसलिए कई लोगों को सर्दी खांसी या वायरल जैसी परेशानियाँ हो जाती है। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि ताज़ा और घर का बना खाना ही खाए। मौसमी फल और हरी सब्जियां अपने डाइट में शामिल करें और दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहे। अगर बारिश में भीग जाए तो घर पहुंचकर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन ले, अच्छी नींद ले और हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक के लिए भी थोड़ा समय निकाले। छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी सेहत को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। याद रखिए, स्वस्थ रहेंगे तो हर मौसम का मजा दोगुना हो जाएगा। इसीलिए इस मॉनसून बारिश का आनंद भी लीजिए और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त है शानदार गाने का। जुड़े रहिए इन द शो दिल से, क्योंकि अच्छी सेहत और अच्छे गाने दोनों जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से और ऑफ कोर्स ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: केमिकल इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ न जाने कितनी यादें लेकर आता है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही हो, खिड़की पर बारिश की बूंदे गिर रही हो, हाथ में चाय या गर्मा गर्म पकौड़े हो और टीवी पर आपका पसंदीदा कार्टून चल रहा हो, सच कहे तो ये एहसास किसी छोटी सी खुशी से कम नहीं होता। बचपन में हम सबका कोई ना कोई फेवरेट कार्टून जरूर रहा होगा, उसे देखते ही आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही तो जादू है उन यादों का, जो उम्र के साथ कभी भी पुरानी नहीं होती। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से मुस्कुराने का मौका दीजिए। बारिश की ठंडी फुहारों के बीच थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने पसंदीदा कार्टून का एक एपिसोड देखिए और कुछ पल बिना किसी टेंशन के बिताइए। आखिर खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी खुशियां ही हमारी शाम को खूबसूरत बना देती है। तो मुस्कुराते रहिए, बारिश का आनंद लीजिए और अब तैयार हो जाइए बेहतरीन गानों के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, क्योंकि यहाँ हर शाम होती है दिल से खुशियों के साथ। ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर भारत में किसी शहर की बारिश की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो है मुंबई की बारिश। कहते हैं कि मुंबई की बारिश सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। बारिश की पहली फुहारें, समंदर से आती ठंडी हवाएं, मरीन ड्राइव की लहरें, सड़क किनारे गर्मा गर्म वड़ा पाव और हाथ में चाय, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं करा जा सकता। हाँ, कभी कभी तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक और सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई वाले जिस हौसले से और मुस्कुराहट के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं वही इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार मुंबई की बारिश का अनुभव जरूर कीजिए। किसी खूबसूरत और सुरक्षित जगह पर बैठकर बारिश को देखिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए और उस पल को बस जी भर कर जी लीजिए। यकीन मानिए ये एहसास लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। तो इस प्यारे से शाम में बारिश हो या ना हो, अपने दिल में खुशियों की फुहारें जरूर बनाए रखिए। अब वक्त है बेहतरीन संगीत का, जुड़े रहिए इन द शो दिल से, क्योंकि हर शाम कुछ नई यादें और शानदार गाने आपका इंतजार करते हैं यहाँ पे ओनली ऑन एमजे मैरी पोनी। फिल्म साथ है तो बात है।

0: आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वनीषा आपके साथ। देखते देखते हमारी आज की हैप्पी इवनिंग वाइब्स अब यहीं पे ख़त्म होने जा रही है। उम्मीद है कि आज की इस खूबसूरत शाम में हमने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई होगी और हमारे गानों ने आपका साथ बखूबी निभाया होगा। अगर आपका दिन थोड़ा थका देने वाला था तो उम्मीद है कि संगीत ने आपको कुछ सुकून के पल दिए होंगे, और अगर आपका दिन पहले से ही शानदार था तो हमें खुशी है कि हम आपकी खुशियों का हिस्सा बन पाए। याद रखिए, जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसलिए बीती बातों को पीछे छोड़िए, अच्छी यादों को अपने साथ रखिए और आने वाले कल का स्वागत पूरे उत्साह और पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ भी रहे खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि एक छोटी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई शाम, नई बातें, नई ऊर्जा और शानदार गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन MGM रेडियो पॉइंट FM। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशु वैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ, और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था। चाय तो कम पीता था लेकिन उससे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की। कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था। कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है।

0: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट छत्रपती संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस, सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. विजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503082913.

अपने छत्रपति संभाजीनगर में सिग्नल तो है लेकिन चलते है क्या? यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि शहर में जो सिग्नल है वो सीधे साधे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट सिग्नल्स। जी हाँ, स्मार्ट तरीके से सिग्नल चलते हैं कि उल्टी गिनती कभी को आरियत शुरू कर देते और उल्टे तरीके से सिग्नल चलते है। कभी ग्रीन सिग्नल होता है तो रेड लाइट लगती है और कभी रेड लाइट पर ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से टाइमिंग इसका हो रहा है। और जो टाइमर होता है ना लगाया हुआ, वो कभी कभार बीच में रुक जाता है, सही चलता है तो कभी रॉन्ग तरीके से चलता है, बीच में ही ना तो सिग्नल बंद हो जाते हैं, चलते चलते सिग्नल बंद हो जाते हैं और टाइमर तो दिखाई ही नहीं देता। एंड इस वजह से 7 हिल के पास ना तो अक्सर ट्रैफिक जाम हो रहा है। और बस 7 हिल से नहीं, समर्थ नगर, मिल कॉर्नर और शहर में के बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि स्मार्ट है लेकिन खराब हो चुके हैं और इसका मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, खराब खराब और खराब वाली, लेकिन इसको ठीक ठीक और ठीक करने वाला टाइम अब तक आया नहीं। शायद जब टाइम आएगा तब ये ठीक करेंगे, लेकिन कब होगा पता है क्या? जब तक इस सिग्नल्स की वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो या किसी की जान ना चली जाए या कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक ये सिग्नल ऐसे ही रहेंगे। जब ठोकर लगेगी तब जाके ये सिग्नल ठीक हो जाएगी। और ट्रैफिक जाम तो अब रोज ही हो रहा है तो इसकी आदत लग गई है। रास्तों का तो कुछ होता नहीं है मेंटेनेंस, ये सिग्नल का कब होगा ये भी नहीं पता। सो घर से थोड़ा जल्दी निकले ताकि आप डेस्टिनेशन पर वक्त पर पहुंचे। बाकी अब एंजॉय करें आरजे अदनान के साथ सुपर डुपर हिट गाने ऑन MGM 90.8 FM।

जो भी एड्स आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देते वो ट्रस्टेबल नहीं होते, याद रखिएगा, वरना आप भी बहुत पछताओगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और अपने शहर में आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग ना तो साइबर फ्रॉड के इस जंजाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक केस सामने आया है जहां पर 70 या 71 साल की बुजुर्ग है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर उनको एक AI एड दिखी और उस एड में बताया हुआ था कि आप कॉन्टा इनोवेक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, मतलब जिसको पहचाना जाता है कॉन्टाइन CFD ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। उन बुजुर्ग को लगा कि यार ये तो ट्रस्टेबल है, चलिए फिर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो पहले उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ, पैसा बाहर निकालना है, तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी। तो सामने से बताया गया कि आपको UK टैक्स के लिए कुछ पैसे भरना पड़ेंगे, तभी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और उसके बाद उन्होंने पैसा पे किया, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा आने के बदले उनके बैंक से पैसा कटता हुआ जा रहा था और इन्वेस्टमेंट उन्होंने तकरीबन 30 लाख की थी। और फिर देखते पैसा गायब हो गया। सामने वाली कंपनी को कांटेक्ट कर रहे तो कुछ कांटेक्ट उनका हो ही नहीं रहा था। फिर उनको समझ में आ गया कि अपने साथ तो फ्रॉड हो चुका है। और ये इन्वेस्टमेंट उनकी 12 मार्च से शुरू थी तो जुलाई तक, उसके बाद फिर फ्रॉड हुआ। फिर वो पुलिस स्टेशन गए, बाद में पता चला कि किस तरीके का ये पूरा केस था, साइबर फ्रॉड। तो ऐसी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो प्लीज, हमेशा हर कोई कहता है आपसे कि यार ऑनलाइन फ्रॉड में मत फंसिएगा, लेकिन लोग फंसते ही जा रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, कोई भी एड्स के ऊपर ना तो के भरोसा मत कीजिएगा, ट्रेडिंग के एड्स या फिर इन्वेस्टमेंट के एड्स। और हाँ, आजकल तो

0: ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ സെൽഫ് ആർ ജെ അദ്നാൻ ആൻഡ് യു ആർ ലിസണിംഗ് എം ജി എം 90.8 FM. और हम हमारे शो में ना तो अक्सर स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, गपशप करते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं एक शेफ के साथ. जी हाँ, और हमारे साथ है शेफ कुणाल कुमावत. तो आज इन्हीं के साथ गुफ्तगु होगी, बातें होगी. हेलो कुणाल जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है.
1: नमस्ते सर.
0: हेलो, कैसे हो सर आप?
1: मैं बढ़िया, आप बताइए.
0: एकदम बढ़िया. आप शेफ कैसे बने, किस तरीके से आप इस फील्ड में आए थे?
1: पहले तो मुझे पता ही नहीं था शेफ क्या है, मतलब क्या होता है. जस्ट एक घर पे थोड़ा बहुत पुराना रात का राइस, वो जो भी वाइट रहता है, थोड़ा सुबह फ्राइड राइस बना के या फिर राइस गरम करके, या फिर कभी भूख लगी मैगी बना दी, थोड़ी टेस्टी वाली सूपी मैगी, थोड़ा सॉस भी डाल के, कभी तड़का मार के, तो ऐसे बना लिया. और फिर बाद में ऐसे पता चला कि कुछ भी होता है एक होटल मैनेजमेंट करके.
0: येस, येस.
1: तो उसके बाद मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर बाद में एडमिशन हो गया. IHM भुवनेश्वर कॉलेज में स्टडी की, फिर बाद में पास आउट होकर कैंपसिंग में लग के फिर अभी 10 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है. वर्क इन मैरिट स्वीट पुणे, देन दी ओबरॉय मुंबई नरियन पॉइंट, देन WTY हिल्टन गोवा, न्यूटीडॉक, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट शेफ एट दी SSK सोलिडर होटल नासिक.
0: ओके,
1: सो वी हैव 2-3 होटल्स इन नासिक. वन इज द SSK सोलिडर होटल, एंड अनदर इज द SSK सोलिडर होटल बुटीक होटल एंड स्पा, एंड देयर इज वन कैफे, टू सिस्टर्स एंड किचन. सो आई एम रनिंग दैट आल्सो.
0: क्या बात है. पर सर, हर एक शेफ की एक स्पेशलिटी होती है कोई डिश, तो आपकी क्या स्पेशलिटी है?
1: वैसे अभी इतने साल किचन में रहा हूँ, काम किया है, तो ऐसा कुछ स्पेशलिटी तो रहा नहीं है. बट हाँ, मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है. वो बहुत अच्छे तरह से, मतलब मेरा फेवरेट, मैं मेरे तरीके से बना लेता हूँ.
0: क्या बात है.
1: यस, बाकी तो ऑल राउंड स्टार्टिंग इटालियन किया था, इटालियन स्पेशलिटी, बट एज अ इंडियन तो ऑब्वियसली बटर चिकन.
0: तो आपका फेवरेट क्या है, इंडियन इटालियन?
1: अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है, मतलब देखा जाए तो डिपेंड ऑन मूड, बट देखा जाए तो घर का खाना इज ऑलवेज बेस्ट.
0: वो तो है. वाओ, तो कुछ इस तरीके से जर्नी थी शेफ बनने की. तो अपनी बातों का सिलसिला और गपशप यूं ही बरकरार रहेगी कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर हिट गाने एंड स्टे ट्यून्ड.

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AI ML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री विजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844-44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, Institute of Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas mil. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: Let's talk about kitchen hygiene. You're listening MTM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है और आज अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट है शेफ कुणाल कुमावत, जिनके साथ आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो कुणाल जी, FDA की कुछ गाइडलाइंस आई है होटल्स में जो किचन होते हैं, तो उसको हाइजीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करें?
1: जी डेफिनेटली, इसमें अभी FSSAI ने सबको बता दिया है, हर एक कैटरिंग कॉलेज में बताया जाता है कि क्या गाइडलाइन है फूड सेफ्टी के बारे में। तो पहले तो सेल्फ हाइजीन हो गया, शेफ ने खुद को कितना हाइजीन रखना चाहिए, खुद और अपने किचन का कितना हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, प्लस जो स्टोरेज है वेज नॉन वेज वो कैसा सेग्रीगेट करके रखना चाहिए, उसमें टैगिंग है या नहीं है, क्लीनलीनेस देखना चाहिए, फिर बाद में आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी चीजें चेक करनी चाहिए, देन आप जो भी कुछ काम कर रहे हो वो सैनिटाइज हो रहे क्या, नाइफ वगैरह जगह सैनिटाइज हो रही है क्या, जहाँ पे कटिंग कर रहे हो आप चॉपिंग बोर्ड कलर कोडेड के यूज के हिसाब से यूज हो रहे क्या, उसके बाद यूज करने के बाद वो सैनिटाइज हो रहे क्या। तो ये सब एज FSSAI के मामले से देखा जाए तो सबने देखना चाहिए।
0: और एक बेसिक सवाल सर, कि बहुत सारे होटल्स में क्लीननेस बहुत अच्छी होती है लेकिन कुछ होटल्स में नहीं होती है, तो दिन में से कितनी बार अपना किचन हम क्लीन करें?
1: देखो अभी क्लीनिंग के बारे में तो ये है, शेफ की एक बहुत अच्छी और बुरी आदत ये रहती है कि वो जैसे काम करता है पहले क्लीन करता है। इसे अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं।
0: बुरा क्यों?
1: बुरा मींस इन द सेंस, अभी आपको ऑर्डर है, ऑर्डर चल रहा है, किचन फुल बिजी है, पर उसको पहले ऑर्डर से पहले क्लीन करना है। सो वो उसके माइंडसेट है कि मुझे अभी ये काम हो गया, मुझे क्लीन करके फिर दूसरा काम करना है। पर अभी अगर एज अ शेफ मैं बोलूंगा मुझे इमरजेंसी है भाई, वो तू छोड़ पहले तू ये ऑर्डर निकाल, पर उसका माइंडसेट है मैं पहले मैं क्लीन करूंगा फिर ऑर्डर निकालूंगा, तो दैट्स बुरा मतलब ये बोल सकते हैं। और बाकी अच्छा तो ऑल टाइम गुड है, आप हर एक टाइम पे क्लीनलीनेस रख ही रहे हो, दैट्स ऑल वेल एंड गुड।
0: तो होटल के किचन्स के हाइजीन किस तरीके से मेंटेन की जाए, इस बारे में अभी हमने जाना, तो ये सभी चीजें याद रखिएगा और अपने होटल के हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। बाकी और भी अपनी बातें यूं ही जारी रहेगी, तब तक

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है और आज हमारे साथ है शेफ कुणाल कुमावत. तो कुणाल जी, FDA ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, उसके अंदर ऑयल के बारे में भी था कि आप होटल में और किचन में ऑयल बस वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, या फिर उसका एक लिमिटेशन होता है ऑयल यूज करने का, उतना ही आप वो ऑयल यूज कर सकते हैं. तो उस बारे में जरा हमें बताएगा कि किस तरीके से हम समझे अब ये ऑयल हमने यूज करना चाहिए या अब इसकी जरूरत नहीं है, ये कैसे समझे हम बेसिक तरीके से.
1: इट्स डिपेंड ऑन व्हाट यू आर मेकिंग. मतलब फ्राइंग में दो बार तो ठीक है, और आप बहुत ही डेली मतलब हर टाइम फ्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो वन टाइम यूज होना चाहिए सर.
0: ओके, वन टाइम. बट वो कैसे समझे कि ऑयल खराब हो रहा है या अभी अच्छा है, कुछ ऐसे एक नजर में हमें समझ में आ सकता है क्या?
1: ऑब्वियसली अभी आप रील में देखते होंगे कि सब बोलते हैं देखो ग्रीस ऑयल, ये ऑयल, उतना वो ग्रीस होने तक जाना ही नहीं चाहिए.
0: मतलब ब्लैक नहीं होना चाहिए.
1: एग्जैक्टली, ब्लैक भी और थोड़ा जल जाता है ऑयल तो स्मेल आता है और उसका कलर टेक्सचर ASAP चेंज हो जाता है. तो आपको समझ लेना चाहिए कि अभी चेंज करने का बारी आ
0: गया है. और कुणाल जी, वो फूड कलर जो होता है लोग अक्सर खाने में डालते हैं तो
1: और होके होना भी नहीं चाहिए, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड वो आदत ही बुरी है. बट देखा जाए आपको कलर चाहिए ग्रेवी में कुछ भी, कश्मीरी रेड चिली आती है होल,
0: ओके,
1: उसको भिगाओ, अच्छे से बॉईल करो, पेस्ट मारो, कोई भी ग्रेवी में यूज करो, क्योंकि आप नेचुरल हो, नेचुरल पीजे यूज करो.
0: यस,
1: केसर है, सैफरन है, येलो कलर के लिए वो यूज करो, स्पिनच, स्पिनच यूज करो ग्रीन के लिए, रेड के लिए कश्मीरी चिली है वो यूज कीजिए.
0: तो फूड कलर छोड़कर जो अभी शेफ जी ने हमें बताया है वो चीजें आप यूज कर सकते हो अपने किचन में ताकि खाना और स्वादिष्ट बने. और अभी अपनी बातों का सिलसिला गपशप यूं ही जारी रहेगी कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून्ड.

0: गाने को लगाकर ब्रेक आरजे अदनान आपके साथ आ चुका है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आज हम बात कर रहे हैं शेफ कुणाल कुमावत जी के साथ। तो कुणाल जी, अक्सर एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है, सवाल होता है कि इस दुनिया में, इस धरती पर वेज बिरयानी होती है या नहीं, मतलब वेज बिरयानी है या वो बस पुलाव है, आपके क्या ओपिनियन है एज अ शेफ?
1: ये अभी ये तो ऐसा हो गया, पहले मुर्गियां ही अंडा, ठीक है, बट अंडे को अभी कोई मतलब सक्सेस मतलब बोल नहीं पाया कि ये प्योर वेज है और नॉन वेज है। सेम बिरयानी का वही हाल है, वो अंदर है ना बाहर है। तो जिस परस्पेक्टिव से देखा जाए कि वो बिरयानी भी है, वो ताहिरी भी है, वो वेज पुलाव भी है, तो वो डिपेंड अप टू यू, व्हाट यू हैव इट एंड व्हाट यू थिंक इट।
0: यस यस, पर बिरयानी नॉन वेज की होती है।
1: एग्जैक्टली, वो तो है,
0: वो तो है, मतलब जो कहते हैं कि वेज बिरयानी वो पुलाव होता है, याद रखिएगा सर। ये हाँ या ना बस गई है,
1: अभी इस पे कोई भी शेफ श्योरली बोल नहीं सकता।
0: नहीं सर, ये लीगल मतलब इसके ऊपर ठाप तो नॉन वेज की है,
1: वो डेफिनेटली अभी वो शेफ लोग का कमिटी बैठेगा उसके ऊपर वो सोल्यूशन निकालेगा।
0: यस एग्जैक्टली। सो सर, आज एमजीएम में आप आए हो इंडक्शन के लिए।
1: जी,
0: तो आपको कैसे लगा एमजीएम का पूरा माहौल, होटल मैनेजमेंट?
1: मैं तो बोलूंगा कि मैंने सिर्फ IHM कॉलेज देखे, उसके बाद यूनिवर्सिटी कोई देखी नहीं थी। मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी विजिट था।
0: ओके,
1: और डेफिनेटली अमेजिंग, बहुत अच्छा। एक ही अंडर वन रूफ इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे कॉलेजेस, स्टूडेंट 10,000 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और हर एक चीज है, हर एक चीज है। मैंने अभी देखा नीचे वहाँ पे वो साड़ी बनाने का खादी डिपार्टमेंट, क्या बात है, मैंने कभी इतना बड़ा फैक्ट्री देखा नहीं, बट छोटे में बड़ा फैक्ट्री। और फिर बाद में वहाँ पे देखा मैंने कि वो प्रिंटिंग स्टैचूज हो रहे थे, तो क्या बढ़िया बना। अभी मैंने मतलब

ये कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी, छोटी रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

पास आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 Native FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

खाम मुड़ मुड़ के वा वा वा, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वा वा वा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

0: जैसे वह सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8.